अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने हफ्ते की शाम ईरान के खिलाफ फजाई हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। ऑपरेशन में सेंटकॉम ने तेहरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को कमजोर करने और ईरानी पासदारान इनकलाब को सजा देने के लिए बुनियादी शहरी ढांचे के अनासर को निशाना बनाया है। जारी करदा बयान में सेंटकॉम ने कहा है कि ये ऑपरेशन उर्दन पर ईरान के हालिया और दो अमरीकी फौजियों की हलाकत और एक के लापता होने का सबब बनने वाले हमलों का बराह रास्त रद्दअमल था। अमरीका वजारत खारजा ने पूरे खित्ते में मुमकिना इंतकामी हमलों के खिलाफ आलमी सफरी वार्निंग जारी की और अमरीकी शहरियों को आलमी सलामती के माहौल के इंतहाई पेचीदा होने के बारे में खबरदार किया है। ईरान पर ताज़ा अमरीकी हमलों में जजीरा कशम पर कम से कम 6 मिसाइल गिरे और मुल्क के जनूबी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जजीरा कशम के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हुकाम ने ताहाल इन हमलों के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। सरकारी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक बंदर अब्बास और जजीरा कशम के बाज़ इलाकों के रिहायशियों ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से कुछ पहले धमाकों की आवाज़ें सुनी। धमाकों की वजूहात और इनके दुरुस्त मुकामात की तहकीकात जारी हैं। महर न्यूज़ एजेंसी ने बाद में शाया करदा खबर में कहा है कि अमरीकी हमले में कुशम के करीब एक इलाके को सुबह 3:40 पर निशाना बनाया गया है। ईरान ने कहा है कि अमरीकी हमलों में बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान वजारत सेहत के जारी करदा बयान के मुताबिक 27 जून 2026 से अब तक अमरीकी हमलों में 5 औरतों और 2 बच्चों समेत 50 अफराद हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह है कि अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ मुश्तरक हमले में दीनी लीडर अली खामनाई समेत मुतद्दद ईरानी अहलकारों को हलाक कर दिया और मुल्क के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। इस हमले ने एक ऐसी जंग को जन्म दिया जिसने आलमी तनाव को बढ़ा दिया है। नए अमरीकी हमलों और बहरी नकलो हमल को निशाना बनाने वाले ईरानी इकदाम ने अप्रैल में होने वाली एक नाजुक जंगबंदी और जून में पाकिस्तान की जेर सालसी तय पाने वाला मुआहदे से पैदा होने वाले देरपा अमन की उम्मीदों को तबाह कर दिया है। इसराइल ने गजा पर हमलों में बच्चों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया है। गजा भर में इसराइल के नए फजाई हमलों में 3 बच्चों समेत कम से कम 11 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। ये हमले अक्टूबर 2025 के जंगबंदी मुआहदे की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करार दिए जा रहे हैं। गजा शहर में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक एक रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद पर मुश्तमिल एक ही खानदान हलाक हो गया है। हमले में वाहद जिंदा बचने वाला फर्द एक कम सिन बच्चा है। इसराइली फौज ने करीबी इलाकों में बमबारी और तोपखाने की गोलाबारी करके मजीद 6 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। इसराइल अक्टूबर 2023 से गजा पर मुसलत करदा नस्लकुशी जंग में 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल और गजा के तकरीबन 90% बुनियादी ढांचे को तबाह कर चुका है। अक्वामी मुत्तहदा ने कहा है कि गजा में बेघर फलस्तीनी बच्चों में खसरे की बीमारी के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 9,300 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से निसफ से ज्यादा का ताल्लुक कुंजानाबाद शहर खान यूनस से है। अक्वामी मुत्तहदा के दफ्तर बराए राबता अमूर इंसानी के एक रिपोर्ट के मुताबिक हद से ज्यादा भीड़, जमा होने वाला कचरा, साफ पानी तक महदूद रसाई और सेवरेज के निजाम की तबाही ने इसराइल की तरफ से बेघर किए गए फलस्तीनियों के कैंपों में मुतद्दी बीमारियों के फैलाव को तेज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिगड़ती हुई सूरत हाल ने महसूर गजा में खसरे को एक बढ़ते हुए अवामी सेहत के बहरान में तब्दील कर दिया है। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक गजा में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाले तिब्बी मसाइल बदस्तूर सांस की बीमारियां और जिल्द की बीमारियां हैं। अक्वामे मुत्तहदा ने मजीद कहा है कि खुसूसन खान यूनिस के इतराफ में पानी से फैलने वाली बीमारियों का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता हफ्ते चिकन पॉक्स, बैरूनी जिल्द पर जुओं के हमलों और बैक्टीरिया से होने वाले जिल्दी इन्फेक्शन के 18,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: जापान के वजीर दिफा ने कहा है कि यूरोप के बास ममालिक की जानब से जौहरी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने की कोशिशों के पेश नज़र टोक्यो को भी जौहरी हथियारों के मामले पर कौमी सतह पर बहस की जरूरत है। रोसनामा क्योटो न्यूज़ के मुताबिक वजीर दिफा शिंजिरो कियोज़ुमी ने इतवार के रोज़ एक ऑनलाइन प्रोग्राम में कहा है कि जापान अब इस मौजू पर बात करने से गुरेज नहीं कर सकता। कियोज़ुमी ने कहा है कि जापान की सलामती की सूरत हाल पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त हो चुकी है और टोक्यो को बास मौजूद पर बहस के नाकाबिल ले कबूल होने की सोच से निकलना होगा। अपने मौकफ की हिमायत में उन्होंने फ्रांस और फिनलैंड की जानब से अपनी जौहरी दिफाई सलाहियतों को

मजबूत बनाने के लिए इख्तियार करदा हिकमत अमली का भी हवाला दिया है। वाज़ेह रहे कि फिनलैंड की पार्लियामेंट ने जून में एक ऐसा बिल मंजूर किया था जिसके तहत मुल्क में जौहरी हथियार लाने की इजाज़त दी जा सकती है, और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने मार्च में ऐलान किया था कि इनका मुल्क अपने जौहरी वारहेड्स की तादाद में इजाफा करेगा। यूक्रेन की सरकारी हंगामी खिदमत ने आज बरोस इतवार जारी करदा बयान में कहा है कि रात भर दारुल हुकूमत केव पर रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमलों के नतीजे में केव के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद मुकामात पर आग भड़क उठी, शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, गैर रिहायशी इमारतें मुतासर हुई और खुले इलाके में मलबा बिखर गया। सरकारी फेसबुक पोस्ट के मुताबिक इमदादी टीमें जाए वकुआ पर आग बुझाने और मलबा हटाने की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। एक और ड्रोन हमले में जनूब मशरकी इलाके ज़ापोरिजिया में एक मुसाफर ट्रेन भी निशाना बनी है। ज़ापोरिजिया के गवर्नर इवान फेडोरोव ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में इस हमले में एक शख्स के जख्मी होने की तस्दीक की है। दूसरी जानब यूक्रेन फजाइया ने कहा है कि इसने रात भर के हमलों के दौरान 18 मिसाइल और 108 ड्रोन मार गिराए या नाकारा कर दिए हैं। इधर रूस के शुमाली इलाके स्टावरोपोल में भी रात के हमलों के बाद एक सन्नती तनसीब में आग लग गई। गवर्नर व्लादिमीर देमूरोफ ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि इसकी ये हमला दुरुस्त था। व्लादिमीर देओफ ने कहा है कि ये तनसीब रिहायशी इलाकों से काफ़ी दूर वाक़ है और करीबी रिहायशी इलाकों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। रूस वजारत दिफा ने केव पर हमले की तस्दीक की और कहा है कि इसकी अफवाज ने दारुल हुकूमत और इसके नवाह में वाक़ फौजी और सन्नती तनसीबात, लॉजिस्टिक मराकज़ और बहरा असवद के साहली इलाके ओडिशा के यूज़हनी बंदरगाह के इस बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसे रूस के मुताबिक फौजी साजो सामान के जखीरे और तरसील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हंगरी के सदर ने अपने ओहदे की मुद्दत के खात्मे से मुतल्लिका कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। हंगरी के सदर तामाश शोयोक ने मुल्क में जारी बड़े सियासी बहरान के दौरान एक आईनी तरमीम पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इनकी अपनी सदारती मुद्दत मुलाजमत फौरी तौर पर खत्म हो गई है। वजीर आजम पीटर माग्यार की ज़ेर क़यादत बरसरे इक़्तदार जमात की जानब से मंजूर किए गए इस कानून का मकसद साबिक रहनुमा विक्टर ओरबान के कायम करदा हुकूमती ढांचे को ख़त्म करना है। तरमीम में इस बात का हवाला दिया गया है कि सदर जिन्हें असल में ओरबान के इत्तेहादियों ने मुंतखब किया था, अब एतमाद के संगीन फुकदान का सामना कर रहे हैं। शोयोक ने कानून पर दस्तखत करते हुए खबरदार किया है कि यह इकदाम कानून की बालादस्ती पर एक शदीद ज़र्ब है। इस जामे आईनी तरमीम के तहत अरकान पार्लियामेंट के लिए मुद्दत मुलाजमत की हद मुकर्रर की गई और हंगरी के अटॉर्नी जनरल को भी इनके ओहदे से हटा दिया गया है। तुर्क तैराक ने आर्कटिक के इलाके में 1200 मीटर तैराकी मुकम्मल करके तारीख रकम कर दी है। 38 साल तुर्क तैराक देनिस कायादिलैन नार्वे के इलाके स्वालबार्ट में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में 1200 मीटर तैराकी मुकम्मल करके इस इलाके में तैरने वाली पहली तुर्क तैराक बन गई हैं। 6 दफ़ा आलमी चैंपियन और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल खाया देलैन ने ये रिकॉर्ड अपनी 10 माह की बेटी के साथ सियाहत के दौरान कायम किया है। इस कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए खाया देलैन ने कहा है कि मैंने फ़खर से तुर्की का परचम लहराया है और मुझे उम्मीद है कि यह तारीखी कामयाबी पूरी दुनिया की औरतों के लिए इल्हाम बनेगी। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। डेक्लन राइस ने मैच के तीसरे मिनट में पहला गोल किया और एजरिन कोंसा ने 18वें मिनट में दूसरा गोल स्कोर किया। बोका योसाका ने पहले हाफ के 37वें मिनट और इंजरी टाइम में 2 गोल करके 3 लाइन्स के नाम से मारूफ इंग्लैंड को 0-4 की बढ़तरी दिलाई। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियान एम्बापे ने दूसरे हाफ में 48वें और 66वें मिनट में 2 गोल किए और ब्लैडली बारकोला ने 54वें मिनट में फ्रांस का तीसरा गोल स्कोर किया। साका ने 87वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। इंजरी टाइम में उस्मान डेम्बेले ने फ्रांस का चौथा और आखिरी गोल किया और मैच के आखिरी लम्हात में जोट बेंगकम ने इंग्लैंड का छठा और आखिरी गोल कर दिया। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं तान्र इस्तेमेस से और गाया है एजदा पेकान ने।